0: নমস্কার, আমার সুখদেব বসাল শ্রী নন্দেশ্বর মহাদেব মন্দিরের ব্যবস্থাপনা সমিতিকে বাঁচাচ্ছে। 2083 সাল বিয়া দশমী দীপাবলী ছড়পর্ব পালন অবসরমা সম্পূর্ণ আমা বুয়া দাদুভাই তথা দিদিমণিহরু সাথে দেশ বিদেশে রহনুভা দাদুভাই তথা দিদিমণিহরু সম্পূর্ণ মেলা পারিবারিক রূপমা বিয়া দশমী দুর্গা মাতাকে সদৈব রক্ষা গরুন ভন্দ এক আপসমা মেলমিলাপ সদ্ভাব একতাকে কামনা করতে সম্পূর্ণমা সুস্বাস্থ্য নিরোগী দীর্ঘায়ুকে কামনা করতে এসে সন্দেশ মার্ফৎ সম্পূর্ণলাই বিজয়া দশমী দুর্গা মাতাকে সদৈব রক্ষা করুন ভন্দ বিদা হচ্ছু। হস্ত নমস্কার, ধন্যবাদ।
1: সম্পূর্ণলাই নমস্কার। আমাদের গরেকো বিজয়া দশমী তথা দীপাবলী ছট পর্ব নেপাল সম্বত শুভ উপলক্ষ্যমা 52 কোটি সামুদায়িক বনকো তরফবাট আমরা সম্পূর্ণ পদাধিকারী মূল সমিতিকা সদস্যজীবহরু সল্লাহকার সংযোজক লগায়ত সম্পূর্ণ সল্লাহকারজীবহরু আমরো অনুগমন সমিতিকা সংযোজক তথা সদস্যজীবহরু র দেখা সমিতিকা সংযোজক সদস্যজীবহরু আমরা কর্মচারীজীবহরু তথা এস 52 কোটি সামুদায়িক বনকো সম্পূর্ণ উপভোক্তাজীবহরু র সম্পূর্ণ আমরো এ সাবিক টিমটিপকা সম্পূর্ণ চাইলে উপভোক্তা লগায়ত সম্পূর্ণ জনহরু র দেশ বিদেশমা বস্নুভাইকা সম্পূর্ণ দাজুভাই দিদিবহিনীহরুমা বিজয়া দশমীকো মঙ্গলময় শুভকামনা তথা यो आउँदै गरेको जुन छठ पर्व नेपाल सम्बन्धमा सम्पूर्णको उन्नति प्रगतिको कामना गर्छु र उहाँहरूकोले चाहिने सम्पूर्ण इच्छाहरू कामनाहरू पुरा हुन् र हामीले यहीँ 52 कोटि सिद्धधामको पनि मङ्सिरको 23 गतेबाट मङ्सिरको 29 गतेसम्म एउटा महायज्ञ लगाउँदैछौँ र त्यसमा सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई उक्त कार्यक्रममा आएर आफ्नो चाहिँ नि पुण्य आर्जन गरिदिनको लागि मैले हार्दिक अनुरोध गर्छु।
2: नमस्कार, म रामचन्द्र छेत्री बुटौल उपनगरपालिका वार्ड नम्बर 11 को वडाध्यक्ष। 2083 सालको विजया दशमी शुभ दीपावली छठ पर्व र नेपाल सम्बतको अवसरमा सम्पूर्ण वडावासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र सम्पूर्ण स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा यहाँहरूको उन्नति प्रगति सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। यहाँहरूको सुस्वास्थ्य रहोस्, समृद्धि रहोस्, यहाँहरूको माया हामीलाई प्राप्त भइरहोस् र ओडावासी र दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले जुन माया सद्भाव दिनुभएको छ र सल्लाह सुझाव दिनुभएको छ त्यसले गर्दाखेरि हामीले समग्र विकासमा हामीले सहयोग गर्न सजिलो बनेको छ र हाम्रो आफ्नो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन सजिलो भएको छ। तसर्थ यहाँहरूको यो माया सद्भाव फेरि पनि प्राप्त भइरहोस् हार्दिक शुभकामना गर्दछु। मेरो तर्फबाट, ओडादेशीको तर्फबाट र ओडा समिति सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि कर्मचारीको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई फेरि पनि हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु।
3: हो, घर पनि कति राम्रो बनेछ, ठिकै भएछ।
4: अब काठको रेलिङहरू राख्नु पर्ने छ, कुर्सीको राम्रो डाइनिङ टेबल पनि राख्ने हो यहाँनिर।
5: बाबा, मलाई पनि एउटा काठको दराज राखिदिनु है मेरो कोठामा, मैले अस्तुनीदेखि भनिन्छु नि हजुरलाई।
3: ल, बाह्र हात नागेर भित्तामा रोकिने भन्थे, त्यस्तै चाल नगर्नु न। ल, यो सुन्नुहोस्,
6: घर अफिस वा होटल डिजाइन हेर्ने मात्र होइन, अनुभव गर्ने कुरा हो। वेलकम टु ग्लोबल इन्टेरियर, जहाँ तपाईँको ड्रीम घरलाई मोडर्न टेक्नोलोजी र प्रिमियम फिनिशिङबाट चम्काइन्छ। हामी केवल साधारण कार्पेन्ट्री मात्र गर्दैनौ, हाम्रो एडभान्स प्रोडक्सन सिस्टममा उपलब्ध छ सिजनिङ प्लान्ट,